प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हों का कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी के सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नरक कहीं ना लेख है, नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ये शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हैं इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसरत तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ये भी आख्या है,

नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा। नंबर वन, देही नु सोध, देही नु काढ़, इस नु डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करती है, तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता, क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नूं कमजोर बनाने हैं, इस नूं खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, फिर इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नूं सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

ऐ मां मेरा मन मेरे वस च नहीं। साढ़े जेड़े ख्याल हैं वो बड़ी शक्ति रखते हैं। ख्यालों का एक ट्रैफिक है, समझ लो असी उस ट्रैफिक के दरमियान च खड़े हैं। वो ट्रैफिक सानू हिट करता है, कोई ख्याल किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है। हरेक ख्याल का अपना इन्फ्लुएंस है। कोई ख्याल सानू डिप्रेस कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू एंग्जाइटी दे दिंदा है, कोई ख्याल सानू सैड कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू वरीड कर दिंदा है। सब ख्याल ही ख्याल हैं। मन जड़ा है वो टिकाओ च नहीं है, स्टिलनेस दे विच नहीं है। बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि मन दे नाल फिर की कीता जाए, इसनू टुकान दी की विधि है, केड़ा अभ्यास है। आओ आप जिन्हों मैं दो तीन लाइना आज अर्ज करांगा उन्हां नू लैके ही प्रैक्टिस करना, ताकि सिंपल सिंपल टेक्निक्स अर्ज कीतियां जान, ताकि उन्हां नू आप एक्सरसाइज कर सको। लगातार 3-4-6 महीने तक एक्सरसाइज करन दे नाल you will find a great difference in your quality of mind and you will achieve stillness of mind. Abhyas ki hai? Bani ch is tarah ke.

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ, विटनेस करने वाले

eye on your every single thought the minute it creeps in, and what it does inside you, for how long it stays inside you, and then how the second thought is followed by. Can they try to see the whole process of thoughts coming and going? अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनु देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असि अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनु वाच कर सकते हैं। टेलीविजन देते तस्वीर चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असि अलग चेयर देते बैठ जाने हैं तो उसे उन्होंने देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारों के उत्ते असवारी करो, भाव के उन्होंने इनडिफरेंट होके उन्होंने अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनैक्टेड यूअर सैल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप में थॉट्स को अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है, ना उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्होंने देखना है। अपने विचार असवारी कीजिए का मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नु करना है। अपने विचार असवारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हों का जो फ्लो है उसनु देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नु देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप दे विच

अंतरूप मंगल सब जाके थप थप सुनिए धरता के राज में राज जोग में जोगी तब में तीसर गस्त में भोगी त्याय त्याय भक्त है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने।

परमेश्वर पुत्र है ते सब नरक कुंड में पर है मोको दास तबन का जानो वाह वाह गोविंद सिंह।

जम धूत वे उत नारायण बोले छया अंत काल जम धूत वे उत नारायण बोले छया जम

संसार दे अंदर बोलना है पर गुरु की मत द्वारा। हजूर गरीब नवाज साहब सचे पातशाह ने बड़ा सुंदर फरमान कीता है।

पिताजी मेरे ननकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिताजी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे ननकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सड़ जावन ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दी पुब्बा निकल गई। कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नु की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नु मुखातब होके कहंदा की

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन इशनान कीता, कर दी पाठ ते दही रिड़काउं दिए, दही रिड़के सोना मक्खन कढे। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखिया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लेंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोल दियां कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है, ते बड़े प्यार नाल तू आके निमाणी भैण दे हत्थां तू मक्खन चुक के मुंह च पा लेंदा। अज भी ओही भैण वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा, तली उत्ते मक्खन पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उड़िया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सच्चे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सच्चे पातशाह? अदूर कहन लगे हां मरदाने, तारां भी कई तरह दियां हैं। एक तार जेबे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फाइलां बन गईयां ना, पुराने आरती तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी मरदाने। एक टेलीग्राम दी तार मरदाने, एक राग दी तार है, ए जरा कीर्तन हुंदा है ना, ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा ओ ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नू उपदेश देंदे ने। किसे गुरमुख ने लिखिया है कि तार विन दी चीजां परोम दीए, तार विन दी चीजां परोम दीए, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी तार विच ही शब्द परोके ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी। पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन दी चित चुराई जांदी। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी? मरदाने नेत्र बंद कर छेती पहुंची, मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 सालां तों विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तों, नेत्र बंद कीते खोल दे जो खोले की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानके आने दियां गलियां च पिया जांदा है। आखो सही वाली, पर मरदाना काला है, 12 सालां तों बाद घर आया है, एना कलम काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी बचन करते सन के भाई जिस वेले गुरु नानक तलवंडी आया ते हजूर ने मरदाने नू क्या, मरदाने ए पढ़ की

0: कहूँ महाराजन से छिन छेत लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तस विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो।
1: ते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज दा अज एक होर स्वरूप, क्योंकि अकाल पुरख दे कई रूप ने ते उस दे रूप कथन नहीं कीते जा सकते। कतों ते सचेत रूप होके चेतन अवस्था विच तुरिया फिरदा, कतों अचेत होके सुत्ता पिया, किते भिखारी बन के भीख मंगदा फिरदा, ते किते महादानी होके दान करदा फिरदा, कहूं महाराजिया नूं दान देंदा फिरदा, ते कहूं वड़े वड़े छत्रपति महाराजिया कोलों धरती खो लैंदा, किते ओ वेद दा रूप बन जांदा, किते ओ तिना गुणा दा रूप बन जांदा, किते ओ सर्व गुणा दा सपन्न वाहिगुरु मालिक होके ते संसार दे अंदर नजर आउंदा। ओ अकाल पुरख दा रूप अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे स्वरूप जो आप जी पास कल दे पहुंच चुके ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र स्वरूप जेडे जागदी रूप जागदी जोत है, ओ अज श्री गुरु गुरुद्वारा साहिब जी दे अंदर श्री गुरु नानक सतसंग साहिब विखे सुशोभित हन। उन्हां स्वरूपां नूं आपां सचखंड विखे लैके जाणा जो महाराज साहिब जी दा असल अस्थान है, उत्थे विराजमान कराउणा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सिखां दे गुरु नहीं बल्कि सारे संसार दे सांझे गुरु हन। सारे संसार दी बाणी सारे संसार दा भरम दूर कीता गुरु ग्रंथ साहिब अंदर सच दे नाल जोड़िया है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने, ते सच दी आवाज नूं हमेशा बुलंद कीता। इस दे विचों केवल सच ही सच लभेगा, संसार दे पदार्थ मिले लभणगे, बड़ियां बड़ियां वस्तुआं इस दे विचों लभणगियां, साइंस इस दे विच है, संसार दी फिलासफी इस दे विच है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर केवल नहीं था ते एक चीज नूं नहीं के गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर झूठ नूं था नहीं, इस दे विच झूठ नहीं है। केवल संसार दी एक वस्तु नहीं गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर ओ झूठ नहीं, बाकी सब वस्तुआं संसार दीआं लभ लो इस दे विचों पवित्र स्वरूप है, जागदी जोत है, इस दे विचों जिहड़ी वस्तु लभोगे, क्योंकि रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम, बड़े बड़े पदार्थ ने, लभण दी लोड़ है, लभ जाणगे मिल जाणगे वस्तु प्राप्त हो जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक ऐसा पावन गुरु है। आओ क्योंकि 8 बजे समाप्ति करके उस तों बाद आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी है, ते सेवा करनी है शुद्ध मन नाल। ऐसे गुर को बल बल जाइए, रसना दे उपर साडे ए पंक्ति होवे, शीस उपर साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पवित्र स्वारा होवे, ते कहिए महाराज तू ते मुक्त है, सानू मुक्त कर दे, असी मैला दे भरे होए हां, पापी जीव हां, सानू मुक्त कर सतगुरा, तेरा पवित्र स्वरूप जिस दे शीस दे उपर आ जावे उस दे अंदर संसार दीआं मैला रह जान, महाराज तू मुक्ति दा दाता है, आप मुक्त मोहे तारे, मैनू तार लै संसार दे बंधना तो मुक्त कर दे। पूर्ण श्रद्धा दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी है, हाथ सुचे करके जोड़े ला के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे अरदासा करके, भई अज पवित्र गुरु दा संग हो रहा, पूर्ण गुरु दा संग हो रहा, किते महसूस करो, किते यार दे दोस्त दे नाल जिंदगी बतीत करनी होवे ना, किसे यार दोस्त दे नाल एक पल भी बतीत करन विच आ जाए बड़ा सुकून मिलदा, अज गुरु दे नाल वेखिए भी ए सतसंग कीता होया किन्ना सफल हुंदा, किन्ना सुखदायक हुंदा, किन्ना रिलैक्स मिलदा, किन्नी साडी जिंदगी दे अंदर परिवर्तन आउंदा। आओ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो बलिहार जांदे होए

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया से, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड, देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है, ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। आज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की काम किया है भाई। गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जागा है, तेनू शरीर मिलिया सी, उस शरीर दे नाल तू की पाया है, की अचीव किया है। देखते हैं कि यह शरीर तेनू दिता सी, इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई काम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ए इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ए इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूडी चाल, इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरबा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत

this is what we have done. ऐसे कीता है. स्वाद, सेंसुअल प्लेजर्स, बाद लड़ाई झगड़ा, माए बाप पूत हित प्राता, कहते हैं किसी ही बात कहाट किसी ही पे सगले लर लर मुआ बाद बाद विवाद. हरेक दे जीवन च बाद विवाद है, हरेक दे जीवन च बाद विवाद है. किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी पुत्र नाल नहीं बनती, किसे दी धी नाल नहीं बनती, किसे दी सहुरे नाल नहीं बनती, किसे दी सस नाल नहीं बनती, किसे दी पति नाल नहीं बनती, किसे दी पत्नी नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती. बाद साडे जीवन च बाद बहुत, झगड़ा बहुत, माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मिलो दुआ, किसी ही वाद काट किसी ही पै सगले लर लर मुआ. किसे दे थोड़ा जा काट, किसे दे थोड़ा जा वद, सारे केंदे लड़ लड़के मर रहे हन. इस चीज च ए रतन जन्म जड़ा गवाया गया, मिलया किसी होर कारज दे वास्ते. स्वाद बाद ईरख, फिर ईरखा है, ईरखा मद माया अते माया दे नशे दे विच, मद दे विच. स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया. इन्हां चीजां दे नाल लग के रतन जन्म गवा दिता. तेनू इस वास्ते दिता सी, तेनू इस वास्ते ये प्राप्त होया सी. प्राप्त इस करके होया सी कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया. यही तरह एक मौका सी गोविंद नू मिलन दा, गोविंद नू मिलन दा. उस नू मिलन दी ये जो वारी सी, ये तू एना चीजां दे विच ही चुकाती है, एना चीजां दे विच ही वेस्ट करती है. तो फिर महापुरुष ताड़ना नाल भी आखदे हन के अंधले क्या पाया जागाए. कहंदे हन ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, तू की कम कीता है. बाणी च फरमाया है कि असी किस तरह अपना जीवन गवाने हैं. ये तेतों हिसाब, तेतों ए सवाल, ये तेतों लेखा पूछा जाना है. कहंदे हैं

सो प्रकरण आरंभ किया से अकाल पुरख वाहिगुरु ने सानू शरीर दिता है ते इस शरीर का कोई खास मिशन है ना ते सानू शरीर दे मुतलक ही पता है कि एक ही वस्तु है ते ना ही सानू मिशन दे मुतलक पता है कि मिशन की है। तो उस दे वास्ते दास ने चुनिया सी कि आओ पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचों असी शरीर दे मुतलक इनफॉरमेशन जो सानू दित्ती गई है वह सरवण करिए उसनू हासिल करिए सुनिए कि यह वस्तु की है शरीर वस्तु की है। तो दास ने आख्या सी कि उस दे लई महाराज जी चों 13 नुक्ते 13 पॉइंट्स जो हैं ओ मिलते हैं जिथे सानू यह दस्या जाता है कि शरीर की है। तो जो मैं कह चुका मैं एक दफा फिर उन्होंने रिपीट करता हाँ। नंबर एक, शरीर दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ, जिहड़ी ना असी बना सकते हाँ ना असी खरीद सकते हाँ, यह सिर्फ अकाल पुरख की कृपा दे नाल प्राप्त हुंदी है, इस उत्ते किसी का जोर नहीं है। यह दुर्लभ चीज है, दुर्लभ चीज वह हुंदी जिसकी कोई कीमत ही ना पा सके, दुर्लभ वस्तु है साडे सबना दे पास। और दुर्लभ वस्तु हुंदिया होया असी अपने आप नूं बड़े सैड, बड़े डिप्रेस्ड, बड़े मायूस, जिदा साडे पास कुछ भी नहीं है इस तरह फील करते रहने, हालांकि साडे पास एक दुर्लभ वस्तु है जिहड़ा कि 84 लाख जून नूं भी चांस उस नहीं नहीं मिलता जिसका वह साडे पास है, उसकी असी वैल्यू नहीं करते, सानू उसकी कदर कीमत का ही नहीं पता। पहली गल बाबा जी समझाते हैं कि शरीर दुर्लभ है, तुसी महान अमीर हो क्योंकि इस तो वध के जो कीमती शै होर कोई नहीं है। दूसरा नुक्ता अर्ज किया सी कि यह रब की कामणी है, रब की औरत है, रब की पत्नी है। काया कामण अत सवाल्यो फिर वसे जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागण गुरु का शब्द संभाले। ए सच्चे पिर दे अंदर होण दे नाल ए सुहागण है, पर इस सुहागण नूं जे पिर तों वाहिगुरु तों दूर लै जाओगे, दुनिया दे विच जाके इस नूं गवा दोगे, स्वाद बाद ईरख मद माया दे विच इस नूं डोब दोगे, ये कुमला जाएगी। क्योंकि पिर तों दूर लै जाओ पत्नी नूं तो वह कुमला जाती, उदास हो जाती, वह मर जाएगी।

शरीर सरोवर भीतर है, शरीर सरोवर दे अंदर। कल दे कीर्तन च असी विचारिया सी ना कि महाराज जी वो जिहड़ी वस्तु पानी है वह है किथे, वो किथे है? कहते हैं अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त ना पहाल। वो निधान, वो खजाना, वो दौलत, वो बादशाहत कहते तेरे अंदर है। अज महाराज सरोवर की सिमली दे के कह रहे हैं कि शरीर सरोवर भीतरे, शरीर एक सरोवर है जिस दे अंदर की है अच्छा है, बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत अच्छा है। कमल अनूप, अनूप का मतलब है जिसकी कोई मिसाल ही ना दिती जा सकती, अति सुंदर, यूनिक, अनपैरल्ड। कहिंदे एक कमल है जो इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर है। सानू पता है, सानू पता ही नहीं साड़ा शरीर की है, इस दे विच की है। शरीर सरोवर दे अंदर कहिंदे एक ऐसा खूबसूरत कमल है, एक कमल फुलां दे नाल भरिया पिया है, अते इतने वो खूबसूरत हैं कि उन्हां दी होर कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा महाराज होर की है? कहिंदे परम जोत, ओ जोत जड़ी तमाम जीवां दे विच है, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दे चानन, सब मैं चानन होए, परम जोत, डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट, परम जोत, पुरखोत्तम, पुरखां दा भी पुरख, पुरखोत्तम, अकाल पुरख वाहिगुरु, जो तमाम नारियां नू पुरखां नू पैदा करन वाला पुरख है, ओ परम जोत पुरखोत्तम, जांके रेख ना रूप, जिसकी कोई शकल नहीं नजर आती, जिसका कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है। कहिंदे जांके रेख ना रूप, ओ इस शरीर रूपी सरोवर दे विच है। तो हुण सारे इस पंक्ति दास तो बाद अद्धे दे हिस्से च बोलियो, ताकि असी अज ए नुक्ता लैके जाइए कि कमाल दी गल है, असी ते सरोवर बार संगमरमर दे नाल बने हुए पानी दे नाल भरे होयां नूं ही सरोवर समझदे रहे हां, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दे शरीर नूं सरोवर आख रहे हैं। कहिंदे हन शरीर सरोवर भीतरे, शरीर सरोवर भीतरे अच्छा कमल अनूप, परम ज्योत पुरखोत्तमो, जांके रेख न रूप। सो ए शरीर एक ओ वस्तु है जो कि शरीर एक सरोवर है, इस सरोवर दे विच रब रूप कमल है, अते इस शरीर रूपी सरोवर दे विच ओ परम ज्योत है, ओ पुरख उत्तम है, पुरखां दा पुरख है, जिसकी कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है, फॉर्मलेसनेस दे विच है। तो असा ने अपने इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर जाके इशनान करके, इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर इशनान करना है, शरीर दे अंदर जाना है, अते इस शरीर दी अंदर दी दुनिया जो है, अंदर दा जगत जो है, उस दे विच प्रवेश करके फिर ओ जो रब रूप कमल है उसनु प्राप्त करना है। और जो ही असी उस कमल दे दीदार करते हैं, वो कमल सुगंधी दे नाल, खूबसूरती दे नाल ब्लूम कर रहा है, खिलिया पिया है, अते उस दे नाल जो साड़ी जिंदगी है वो कमल दे फुल वर्गी हो जाती है, अंदर
कमल फुलां दा बगीचा लग जांदा है, अंदर एक बाग खिल जांदा है। तो ये सत पॉइंट आप जी की सेवा दे विच रखे हैं। अगले छे जो हैं वो कल तो असी आरंभ करांगे और असी इन्हां नूं नोट कर लईए ताकि सानू ये पता होवे कि शरीर की वस्तु है। ये दुर्लभ है, ये मंदिर है, ये रब की कामणी है, ये एक घोड़ी है जिस दे राही असी अपनी यात्रा नूं तय करना है। ये सब तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो सारे ब्रह्मंड दे विच है वो इस दे विच है। अते ए एक सरोवर है जिस दे विच रब रूप कमल खिलिया पिया है। असी की कीता है, साड़ी ट्रेजडी की है कि ऐब तन चिकड़ो ए मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई। शरीर दे विच ऐबां दा, एडिक्शंस दा, स्वादां दा, बुरियां आदतां दा चिकड़ कर लिया है ते मन बस उस चिकड़ चो ही नहीं निकल सकिया, अगां कमल तक पहुंचे ही नहीं है। कमल की सार नहीं मूल पाई, कमल दी सार ही नहीं पाई। अगले छे नुक्ते आप जी की सेवा च अर्ज करन तो बाद फिर आप जी सेवा च जो कीर्तन होणगे ओ होणगे कि उस कमल तक असी किवें पहुंचना है, उसके ढंग की हैं, उसदियां विधियां की हैं, उस कमल नूं खिलाण दे वास्ते कि वो खिले उस दियां की रिक्वायरमेंट सन। ये कीर्तन आने वाले दिनों दे विच होणगे। आप जी इसे तरह दर्शन दियो टाइम सिर ताकि इस लड़ी नूं असी जो है गुरु बाबा जी की कृपा दे नाल संपूर्ण कर सकीए, शरीर नूं जान सकीए ते शरीर दे अंदर जो है उसनूं जान जाइए ते उसका रस्ता समझ लईए कि उसे तक किवें पहुंचना है। बस साडी समझ लो मंजिल पूरी हो गई, साडा जीवन सफला हो जाएगा। फिर मैं रिपीट करा, शरीर नूं समझ लईए और शरीर नूं समझन तो बाद इसनूं सानूं साधना पैना है, इसनूं सानूं फिर तड़ना पैना है, इस दे विच चेंजेस लियानियां पैनियां हैं, इस दे विच कई सारियां तब्दीलियां लियानियां पैनियां हैं। महाराज जी आखदे हन तरत काया साध के, ये धरती रूपी काया नूं साधना पैना है, इस उते बहुत सारा कम, बहुत सारी मेहनत करनी पैनी है। वो सारा कुछ अगले कीर्तना दे विच आएगा। जदों असीं शरीर नूं समझ लवांगे, इस नूं साधना किवें है वो समझ लवांगे, इस शरीर दे अंदर की है वो समझ लवांगे, उस तक पहुंचण दा रस्ता की है वो सुन लवांगे, समझ लवांगे, उस तों बाद असीं उस अंदरले जगत की खूबसूरती नूं एक्सप्लोर कर लवांगे। अते जो अंदर साडे वस्तु नूं पाउण नूं महाराज ने कहा है उस नूं असीं पा लवांगे, जीवन दी यात्रा साडी सफल हो जाएगी। भूल चुक दिखेवा प्रेम नाल इस पंक्ति नूं गाओ, ए शरीरा मेरिया इस जग

अमृत पिन्ने देवरे अमृत वृक राम राजे बिना गुरबाणी मन पाया अमृत सब सके गुर तुफे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके हर इके हर इके।

घर होया हर घर मन उठा मन उठा मन उठा सलोक महला पहला नानक पिता बोलिया।